0: से रिवाज भैया किशन बात है आज योर म्यूजिक इज टॉप ऑन योर शो रॉक भैया जी नमस्ते
1: नाइस बॉय बट डजंट लिसन टू अ वर्ड यू से
2: लिसन प्रॉपर्ली

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हो लोटस एफएम। यू आर लिसनिंग टू लोटस एफएम विद रोंको चोंको पोंको एंड आई एम योर स्टोरी, आपका सूरज। ओह या।

मेरी किस दिन होगी हाजरी, मेरा जीवन बीता जाए और बड़ी दूर मदीना तोरा। मैं तो मुफलिस भी हूँ लाचार भी, मैं तो मुफलिस भी हूँ लाचार भी, कैसे जाऊँ मोहम्मद की सरकार में, मुझको भी साथ लेकर चलो ए हाजियो, बेच देना मदीने की बाजार में। यस, ब्यूटीफुल कलाम, ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड बाय नौशाद अली साबरी। माशाल्लाह, बड़ी बेहतरीन अंदाज में इन्होंने इस कलाम को पेश की। एंड आई मस्ट कमेंड आवर लिसनर्स आउट देयर, हमारे सामीन जो है, शुक्रिया हमारे फैसल आदम कलंदर अली साहब एंड हिज एंटायर फैमिली लिसनिंग थ्रू एंड एंजॉइंग द प्रोग्राम। शुक्रिया फैसल आदम साहब, ये मोहब्बत है आपकी। एंड देन फिरोज पाकर, यस ए कवाली आर्टिस्ट हिमसेल्फ, ऑल्सो सेंट अस सम ब्यूटीफुल कमेंट्स दे। शुक्रिया फैसल, एटलीस्ट फिरोज पाकर साहब। असलम सुलेमान, वन ऑफ आवर रेगुलर्स फ्रॉम केप टाउन, ऑल्सो ट्यून्ड इन एंड लिसनिंग थ्रू एंड एंजॉइंग द म्यूजिक। एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव आवर वेरी ओन मोहम्मद असद अकबर फ्रॉम रिजर्वर हिल्स, एंड हाजी मोहम्मद फातिमा बीबी सुलेमान of Unite in Chatsworth, और साथ में बाबू गोरा साहब। जी हाँ, बाबू गोरा साहब, यह आपकी मोहब्बत है मियाँ। टुडे वी वर एट अ फंक्शन एंड अल्हम्दुलिल्लाह द उर्स मुबारक ऑफ हाजा खाजगान खाजा हिंदुल वली अली रहमा हाउसेड इन यूनिट वन, एंड ऑल्सो द उर्स ऑफ किबला पुणे वाले शाह साहेब रहमतुल्लाह अलैह, एंड टू ऑफ योर कलाम्स प्रेजेंटेड देयर ब्यूटिफुली, very very beautiful, it was well received by the audience. Ye mohabbat hai, I would very much love to have you in studio sometimes, inshallah aziz. Itna kehne ke baad aaiye ab hum Hazrat Ali Karamullah Wajhul Kareem ke bekas panah mein chalte hain.

भक्त सज्जनों सुनो सहेलियों की कहानी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, हाँ, अरे अरे